0: Τώρα μαζί με ζητάρ το ουγγελιέ για πότε σα πάρσει δε τόσα εγώ χωστητή.
1: Για να τι σε ταρκανά από σα πάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρτερ ο χωστητή.
2: Έσμα βάσινγκ πόρτερ. Μάρα με ζή μου κορτά national ο multi national. Καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βορειβή. Κούρσε αξάρ γυλάρ τα κίζε τα σαράγγε σαρά προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα κίλε δε χάρβα τε μούτα χάν κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βορειβή σε ρικρέτη. Ο στόλ κούρβολα να χωσούλτη.
2: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरब रो उदार तुया चिप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी ची कपड़े सब युक्शुले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सारा खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवात लोसीना न खर पवी
2: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट या दाई दार तुये दाऊ मोता चेरता मिला जी
1: तारे खाना दाऊ तो दफा बने গলছে আন্দ্রনলা কি গেট জানছে বেগালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইর সাহেব স্যার ওদের তামিলা বেশি।

0: Τώρα μαζί με ζητάρτο που γεγείς για πότε σαπάρσιτε τόσα εγώ χωστητή.
1: Για να τίσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ ο χωστητή.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ. Μάρα με ζει μόχο κορτά νέσνελ ο μάλτι νέσνελ. Καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε δασταραγγε σαρα προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γιλεβε χάρβαστε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοήβη ρικρέτη. Ο στόλ κούρβαλα να χωσούλτη.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सराबरो उदार इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियात थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियात दागा दी चे कपड़े सा पुक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सारा खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सा पई पवा लोसीना नखर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाय दार तो हुई है दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने গলছে আন্দ্রন লাকি গেট জানজেবে গালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইরসেব সারদার তামিলাবিজি।

अंसारी इनायतुल्ला सईदा होलसेलर डीलर पशद बाजार कम खेंदनु जमा आवाज जरूरी पशद बाजार के नवलता कारी इनायतुल्ला दे जिले बाजवड़ की चिकम दा पशद बाजार दे दस हजार जमंग तमाम प्रोडक्ट मिलाएगी सईदा और खार बाजार के डॉक्टर अली खान दे एडमोर पंप के और पड़ाखाने कुसे की दुकान दे तमाम प्रोडक्ट उसे मिलाएगी अनाथ किले की बैंक मार्केट की कारी तेसिनुल्ला सर मिलाएगी पखार बाजार के डॉक्टर अली खान दे और चारमंग बाजार के कारी इरशाद दुकानदार दे लीसम बाजार के नसीर कॉस्मेटिक स्टोर सर मिलाई हुई। हाँ।

वर्षावली और हमिद दुकानदार ने एड्रेस शगई रोड बिलमकाबिल वाबड़ा आप इस कमेंट सीडी सर मिलाई थी कि दुआ सलाम के भी मौलाना अब्दुल खालिक से मंगल मेला खैबर प्लाजा वाई वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह मौलाना अब्दुल खालिक से करक वाई पकरक रेडियो मंदिर आवाज ओके खैबर प्लाजा दुकान नंबर 4 के तमाम प्रोडक्ट जमा दी हो गए।

हॉकी जी नेक्स्ट हुई थी मिकी टूर शिखान कुछ अहम नुक्ते फर्स्ट अच्छा पढ़े इंतहाब के साथ और सेकंड दें बोले इख्तियात के साथ और थर्ड वन बात सुने तवज्जो के साथ एंड फोर्थ गौर करे गहराई के साथ एंड फाइव जिंदगी और जिंदगी करे एतदाल के साथ ही वाजिबाटे से खुशी खबर है नेक्स्ट मी क्यूटो जिखान स्वीट भाई जाने बात करने के लिए बहुत सारे लोग हैं मगर इंतजार सिर्फ तुम्हारा रहता है थैंक यू सो वेरी मच यो जहान मनना शुक्रिया जमा खोरे क्यूटो जिखान स्वीट सिस्टर जानी थैंक यू सो वेरी मच नेक्स्ट मीटर जिखान स्वीट भाई जाने जब दुनिया जाती है तो हसरत छोड़ जाते हैं और जब आती है तो हजारों गम साथ लाती है जी बिल्कुल दगा से दा यो जहान मनना मीटर जिखान स्वीट भाई जाने बड़ा इंसान वो होता है जिसके सामने किसी को छोटापन महसूस ना हो जी बिल्कुल दगा से दा धीरे से धीरे विशोरे खबरें यो जहान मनना थैंक यू नेक्स्ट क्यूटर जिखान मी क्यूटर जिखान स्वीट भाई जाने मत लेको तहरीर उनके लिए अपने खून से जो तेरा खलूस नहीं समझते और तेरा खून क्या पहचानेंगे बिल्कुल ठीक था दगा से दा सही था ओके थैंक यू सो वेरी मच नेक्स्ट मी क्यूटर जिखान स्वीट भाई जाने खुद को अंधेरों से निकालने के लिए खुद ही दिया बनकर जलना पड़ता है पड़ेगा अच्छा ओके बिल्कुल दगा सीधा डेरी जबरदस्त खबर थैंक यू सो वेरी मच मैसेजेस का बोलो और नेक्स्ट वही कहना चाहिए इट्स मी लाडली ज़ीमल फ्रॉम करग सलाम राजू वालेकुम सलाम वेलकम टू द शो थैंक यू सो वेरी मच एंड मोस्ट वेलकम टू यू लाडली ज़ीमल यो जहान मना थैंक यू सो वेरी मच ओके जी नेक्स्ट मैसेज है सीधे दागा मैसेज है जो चे शोना मख के रोगा ले नेक्स्ट सीधे आप बात किस मिला ओके साहिब जी सरंग एडवांस के रोगा ले असम एडवांस के शामिल कर सो बेल कोई प्रोग्राम तरफ दे बसु कहना उदासी चल कभी कहना चाहे रोता रोगा ले दे चाहे बुशी शरबत ब्याह वो मजा नहीं कहना तो से मुनोर में मसंदर और ब्याह वापस रोसो तो इस तरह वो रेसिपी जो मिला हुआ गर्मी देगा ना हाओ जी गर्मी सर रोयो छुआ नो मशरूबात वाला रेसिपी भी शामिल हो आगे ना पास बिल्कुल काल तरफ तो रुसा और ईद उनकी खबर रेसिपी रोज सारा शामिल है शेयर खुद देने पहला आई वासन तरी तरफ तेजी जब वो अच्छे दुआ गुटे चाय सही था।

0: ओके जी वही चे केकेट अपा दवी तरह हां दडा ले चाव दडा ले केड़े दा बिल्कुल मारिया अरमान
1: जंतु शिरिनी
0: भाई चे तरह हां चरते ये गगवका तरह हां चरते गगवका मारिया अरमान ने इंतजार कवेना देशो भाई जे सलाम रोशी खान ता ग्रेड मलिक है मन्नत खटक ता ओ मारिया अरमान ओके जी मारिया अरमान थैंक यू सो वेरी मच जमा से का वलो इट्स मी लाडली सी मार प्रोग्राम करेक्ट स्वीट राजू

0: कमला ब्यूटी क्रीम जिंदाबाद।
1: फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले।
2: जसुमेर द मिश्री बांडा महल्ला हसन हेलना जप मिश्री बांडा के द तेरो लसुकारुना द कॉस्मेटिक्स कारोबार कोमा पकोर के मलकी और गैर मलकी हर किस्म प्रोडक्ट हर सोमा माप जवन के दस कंपनी न दिली दिली खलक वसर दुमरा मीना और खलको तुमरा फायदा मिलावेगी आगा कंपनी द इश्मा कंपनी दा चाचा इश्मा प्रोडक्ट बकारी मासरा मिलावेगी और गारंटी सर बोर को पाकिस्तान जिंदाबाद इश्मा कॉस्मेटिक्स पाइंदाबाद।